0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक के पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: त्याच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: कॉमनवेल्थ गेम्सचे हायलाइट्स आता सादर होतील.
2: आवाजे अनेक, नारा एक. अगले 10 दिन 7 समुंदर पार स्कॉटलैंड के ग्लासगो की फिजाओं में भी इंडिया इंडिया के ये नारे गूंजते सुनाई देंगे, क्योंकि आगाज हो चुका है 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का.
3: Javelin champion Neeraj Chopra is the big attraction. He won gold at the 2018 Commonwealth Games. Boxer Lovina Borghain is back as well and brings in the baton. Three-time Commonwealth gold medalist and Tokyo Olympic silver medalist Mirabai Chanu carries the India flag. He won 61 medals last time in Birmingham, a long way from a single bronze at their first game in 1934.
4: 123 खिलाड़ी 10 अलग अलग खेलों में टीम इंडिया की जर्सी पहन तिरंगे को सबसे ऊपर लहराने का सपना लिए उतरेंगे और उनके साथ उतरेगी करोड़ों भारतीयों की प्रार्थनाएं, उम्मीदें और शुभकामनाएं.
2: अलग अलग भाषा वेशभूषा वाले सभी देशवासियों की धड़कन एक होगी. नीरज चोपड़ा का हर भाला जब आसमान की ओर जाएगा तो उसे देखने वाली निगाहें अलग अलग होंगी, लेकिन उम्मीद एक होगी.
4: लवलीना का हर पंच सिर्फ सामने वाले को पीछे नहीं धकेलेगा, शायद किसी छोटे शहर की लड़की को ये यकीन दिलाएगा कि उसके सपनों की कोई सीमा नहीं.
2: मीराबाई चानू जब वजन उठाएंगी तो सिर्फ बारबेल का वजन नहीं होगा, उसमें करोड़ों उम्मीदों का भार भी होगा और उसे उठता देखकर शायद हमें भी अपने कंधे थोड़े मजबूत लगेंगे. खेलों में मुकाबले अलग हो सकते हैं, लेकिन सपना एक है, अपने तिरंगे को सबसे ऊंचा देखना.
4: हाँ, इस बार खेलों का दायरा कुछ सिमटा हुआ है. 2022 में बर्मिंगम में हुए संस्करण में जहाँ 19 खेल थे, तो वहीं इस बार सिर्फ 10 हैं. बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, स्क्वॉश और टेबल टेनिस जैसे वो तमाम खेल जिसमें भारत ने ढेरों पदक जीते, वो इस 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है.
2: इसलिए कुल पदकों की संख्या कम होना तय है. और बता रही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रतिनिधि हिमिका चौधरी.
5: पिछली बार 61 मेडल्स हमको मिले थे, इस बार उम्मीद है कि एटलीस्ट 32 या 33 मेडल्स हम लेके आए. जैसा कि सबको पता है अब कि जो हमारे मेन मेडल डिसिप्लिन्स है, हम लोग हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, इस वाले ग्लासगो CWG में नहीं है. तो उम्मीद ये है कि जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो हम जरूर अच्छा करेंगे, पर हाँ ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा.
4: इसी साल जापान में एशियन गेम्स भी होने वाले हैं, जिनकी तैयारियों के लिहाज से भी कॉमनवेल्थ गेम्स बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और भारत की महानतम धावकों में से एक पीटी उषा से बेहतर ये कौन जानता है.
6: आई होप दैट प्लेयर्स डिड प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी अच्छा. होप दैट दे डू गुड. एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, वो तो अच्छा है. इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एनीवे 2 months इज देयर, दे विल डू. बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस. हम तो पीछे नहीं है, पहले भी बड़ा कंपटीशन तो इधर ऑर्गेनाइज किया है, बट फिर भी व्हाट आर ऑल द चेंजेस वी हैव टू डू, ऑल टीम विल बी देयर.
4: खेलों के औपचारिक शुभारंभ से पहले ही भारत ने जश्न मनाने की पहली वजह हासिल कर ली है.
2: 2021 में भारत को ओलंपिक मेडल दिलाने वाली लवलीना बोरोगेन को महिलाओं के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है, यानी एक मेडल तो कंफर्म्ड है. उनका सेमीफाइनल मुकाबला 31 जुलाई को टुवालू की तफाकी से होगा.
4: गुरुवार 23 जुलाई को भारत का अभियान लॉन बॉल से शुरू हुआ, वही खेल जिसने बर्मिंघम 2022 में भारतीय खेल इतिहास को एक नई पहचान दी थी। लवली चौबे, पिंकी सिंह, नैमोनी

0: फेकिया और रूपा रानी तिर्की की चौकड़ी ने विमेन फोर्स में 2022 में भारत को गोल्ड मेडल जिताया था, तो वहीं पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया था।
1: इस बार लॉन बॉल्स में ये इवेंट नहीं है। 2026 में केवल सिंगल्स यानी एकल वर्ग और पेयर्स यानी युगल वर्ग को जगह मिली है। साथ के साथ इस बार बाहर नेचुरल ग्रास के बजाय ये खेल इंडोर्स यानी अरीना के अंदर कारपेट वाली घास पर खेला जाएगा। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। खिलाड़ियों ने एक हफ्ता पहले ही वेन्यू पर पहुंच जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी, और बता रहे हैं टीम के सदस्य नवनीत सिंह।
2: It's a different format that the Commonwealth Games hosted for this year in the 2026 Birmingham was a grass green and this Glasgow is indoor carpet. So we are going a few weeks ahead of the games in Britain for the same to practice on that. So definitely that's going to help us to get us a little better and give us advantage over the new format and play our best with the very high quality players in Glasgow.
0: उसका असर देखने को मिला। विमेन पेयर्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी की जोड़ी ने माल्टा को रोमांचक मुकाबले में हराकर जीत के साथ अभियान की शुरुआत कर दी है।
1: दोनों टीमों ने एक एक सेट जीता, जिसके बाद टाई ब्रेकर में भारतीय जोड़ी ने बाजी मारी। इनका अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा। तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल ने मौजूदा आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन कनाडा के रायन बेस्टर को हराया और अगले दौर में प्रवेश पा लिया। उनका अगला मुकाबला फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से शुक्रवार 24 जुलाई को होगा। पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय प्रशंसकों को एथलेटिक्स में हैं, जिसमें सबसे आगे नाम है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोट के चलते 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे, और पिछले साल हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ नीरज ने किसी इवेंट में टॉप 2 में फिनिश नहीं किया। लेकिन इस सीजन में दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर दूर अपना भाला फेंक नीरज ने यह दिखाया कि जीत की भूख उनमें अभी भी बरकरार है।
3: नहीं, मैं काफी खुश हूँ अपने प्रदर्शन से, क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेला, तो मैं काफी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है, तो आशा है कि और अच्छी थ्रो देखने को मिलेगी।
1: हालांकि जैवलिन थ्रो में कॉम्पिटिशन भी उतना ही तीव्र है। नीरज के आर्च राइवल माने जाने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पिछले संस्करण में 90.18 मीटर की दूरी तय कर गोल्ड मेडल जीता था, जिसको बचाने के लिए वो मैदान पर उतरेंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका के रुमेश पाथिरागे, जिनके नाम 92.62 मीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड है, वो भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को तो भूलिएगा मत, जिन्होंने 2022 में दोहा डायमंड लीग में 93.07 मीटर की दूरी तय कर कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड स्थापित किया था।
0: दूसरा बड़ा नाम है मुरली श्री शंकर। बर्मिंगम 2022 लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता था, लेकिन करियर थ्रेटनिंग इंजरी के चलते इन्हें 2024 का पेरिस ओलंपिक्स मिस करना पड़ा था। लेकिन मुरली श्री शंकर ने चोट से उभर कर मजबूत वापसी की और अब ग्लासगो में दावेदारी पेश करने के लिए तैयार है।
1: लॉन्ग जंप के अलावा हाई जंप में सर्वेश कुसारे ने हाल ही में 2.31 मीटर की ऊंची कूद लगा नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उनसे भी पदक की उम्मीदें हैं।
0: साथ ही दिखेंगे तेजस्विन शंकर। हाई जंप में भारत का पहला मेडल 2022 बर्मिंगम में इन्होंने जिताया था,
1: और इस वर्ष ये डेकेथलॉन में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वहीं ट्रिपल जंप में नजरें होंगी एक और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर पर, प्रवीण चित्रवेल, जो कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे स्थान पर आए थे, यानी पदक जीतते जीतते रह गए थे। 2018 के खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में पहली बार इन पर नजरें गई थी, जिसके बाद एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ये पदक जीत चुके हैं। क्या इस बार कॉमनवेल्थ में भी ये पदक विजेता बनेंगे? वहीं 100 मीटर की दौड़ में नजरें होंगी 10.09 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले नेशनल रिकॉर्ड होल्डर मॉडर्न फ्लाइंग सिख गुरिंदर वीर सिंह पर।
0: नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स की बात चली है तो 200 मीटर में आप अनिमेश कुजूर को देखना मत भूलिएगा। महिलाओं में नजरें होंगी पारुल चौधरी पर। 2023 हांगचाओ एशियन गेम्स में इन्होंने 5000 मीटर की दौड़ और 3000 मीटर की स्टीपल चेस में भी स्वर्ण पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ये भारत का प्रतिनिधित्व करती 3000 मीटर स्टीपल चेस में नजर आएंगी।
1: लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में गुलवीर सिंह पुरुषों की

0: 10,000 मीटर और 5,000 मीटर वो दोनों इवेंट्स जिसमें वो मौजूदा एशियन चैंपियन है अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
1: अब बात प्रियंका गोस्वामी की, पहली भारतीय महिला जिन्होंने रेस वॉक में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जितवाया था।
0: पोल वॉल्ट में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर देव मीना और कुलदीप कुमार पर भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होंगी।
1: शॉर्ट पुट में दो बार एशियन गेम्स चैंपियन बन चुके तजिंदर पाल तूर प्रबल दावेदारी पेश करते नजर आएंगे।
0: ये तो बात रही एथलेटिक्स की, अब रुख करते हैं बॉक्सिंग का।
1: मिडिल वेट कैटेगरी में लवलीना का मेडल तो सुनिश्चित है ही, पर फेदर वेट कैटेगरी में उम्मीदें जैस्मिन लंबोरिया से भी कुछ कम नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप दोनों में ही जैस्मिन के नाम गोल्ड मेडल है और 2023 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल है।
0: दो बार की वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी भी 51 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।
1: पुरुषों में 55 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू कर रहे जादूमणि सिंह भारत का परचम लहराने का ख्वाब लिए रिंग में उतरेंगे। इस साल इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में रजत पदक जीता था और इस प्रदर्शन को दोहराने की पूरी कोशिश रहेगी।
0: पुरुषों की मुक्केबाजी में अंकुश, नरेंद्र, सचिन, सुमित और कपिल पोखरिया से भी अच्छे प्रदर्शन की अपेक्षा है, और बता रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह।
2: देखिए 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे। उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
1: अब बात करते हैं स्विमिंग की। 2016 रियो ओलंपिक्स और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का स्विमिंग में प्रतिनिधित्व करने वाले साजन प्रकाश भी चुनौती पेश करते नजर आएंगे।
0: इनके अलावा नजरें होंगी श्री हरि नटराज पर, जिन्होंने 2019 में काठमांडू में हुए साउथ एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक जीते थे।
1: वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू को कैसे भूल सकते हैं। कल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में इन्हें भारतीय दल का ध्वजवाहक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
0: अब बात कर लेते हैं आज शुक्रवार 24 जुलाई को होने वाले इवेंट्स की। भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे द अरीना में पुरुषों के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के टीम इवेंट और इंडिविजुअल इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड खेले जाएंगे, जिसमें तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह भारत की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आएंगे।
1: फिर दोपहर 3:40 पर शुरू होगा पैरा स्विमिंग मेंस S13 100 मीटर फ्री स्टाइल, जहां दिखेंगे रवि वीरा वेंकटा, भवानी कार्तिक और इमाम अली।
0: पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्री हरि नटराज के प्रदर्शन पर नजर रखिएगा।
1: पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुषों में मेडल इवेंट्स में अशोक और परमजीत कुमार नजर आएंगे।
0: तो वहीं महिलाओं में पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक लाने की उम्मीद होगी सुमन देवी और जसप्रीत कौर से। रात 10 बजे के करीब इसी इवेंट का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। लॉन बॉल्स में आज जीत हासिल करने वाली पिंकी और रूपा रानी तिर्की की जोड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लोहा लेती नजर आएगी। तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से भिड़ेंगे। ये तो बात रही लाइट वेट कैटेगरी की। हैवी वेट कैटेगरी में महिलाओं में कस्तूरी राजमणि और पुरुषों में सुधीर और झंडू कुमार नजर आएंगे।
1: बॉक्सिंग में पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह स्कॉटलैंड के एरन किलन से मुकाबला करते नजर आएंगे रात 11 बजे।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 74 देशों और क्षेत्रों से लगभग 3,000 खिलाड़ी 10 खेलों में 215 स्वर्ण पदकों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जहां एक तरफ पदकों की गिनती होगी, वहां भारत अपने खिलाड़ियों के साहस, संकल्प और सपनों की कहानी भी लिखेगा। हर जीत तिरंगे का मान बढ़ाएगी, हर चुनौती नए विश्वास को जन्म देगी, और जब खेलों का ये महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, तब उम्मीद यही होगी कि दुनिया भारत की उपलब्धियों को याद रखे, तिरंगा सबसे ऊंचा लहराए और राष्ट्रगान की गूंज हर भारतीय के हृदय में गर्व का एक नया इतिहास लिख जाए। आकाशवाणी पर लगातार आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की

0: पूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी।
1: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ प्रेरणा और दर्पण की खास रिपोर्ट।
2: जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे डेली हाइलाइट्स कॉमनवेल्थ गेम्स यानी दैनिक झलकियां कॉमनवेल्थ गेम्स की दर्पण टिरकिया और प्रेरणा शर्मा की आवाज में।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: कोयल सी तेरी बोली।
5: ठीक 7:45 झालेली आहेत। आता आपण ऐकूया बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम अज्ञात मुंबई।

0: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
5: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
5: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
4: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
6: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ तो बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी

0: अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: पेश वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में

0: मार करने वाली कोशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
1: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश आकाशवाणी समाचार।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन

0: समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेज न्यू लॉ टू टैकल पेपर लीक्स। टुडेज कैबिनेट मीटिंग टू कम आउट विद स्ट्रिक्टर मेजर्स टू डील विद द इश्यू। Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
2: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: The Delhi High Court has constituted a fast-track court to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The move is aimed at ensuring speedy disposal of cases related to unfair practices in public examinations. More from our correspondent.
3: The newly designated fast-track court will function at the Ross Avenue Courts under the charge of Judicial Officer Anu Grover Baliga. According to a notification issued by the Delhi High Court, the court will hear cases registered under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, along with the connected offences. Ms. Baliga, who was serving as the judge in charge of the mediation centre at Tees Hazari Courts, has been transferred to the Ross Avenue Courts to head the specially designated court. The initiative is aimed at ensuring expeditious adjudication of cases involving the use of unfair means in public examinations. The notification was issued hours after Prime Minister Narendra Modi announced the centre's decision to establish fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in examination paper leaks. Rohan for Akashwani News, Delhi.
1: Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. We have a report.
4: सोनम वांगचुक्स वाइफ गीतांजलि आंग

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 107.1 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो और न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो मस्त मुंबई कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और मैं हूं आरजे शैलेंद्र।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

सनम तेरी कसम से ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे। हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आदाब, केम छो, सत श्री अकाल, आणी मुंबई कसका झकासना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। गुड गुड गुड मॉर्निंग, शुक्रवार की ये सुहानी सुबह, और शुक्रवार को मस्त मुंबई में रहता है सिनेमा का मैटिनी शो। कौन सी है आज की फिल्म जल्द ही आपको बताऊंगा, और कुछ फिल्मी बातें भी होगी, लेकिन फिलहाल जो वक्त हो चुका है 8:51, लेकर आया हूं आपके मॉर्निंग एंटरटेनमेंट का डोज मस्त मुंबई। स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से समय हो चुका है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, समय बिल्कुल अच्छा चल रहा है। आप सुन रहे हैं स्टेशन ऑफ नेशन FM रेनबो, और मैं हूं आरजे शैलेंद्र। मस्त मुंबई को आगे बढ़ाते हैं मस्त वाले म्यूजिक के साथ।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, मस्त मुंबई में आज के मैटिनी शो में आपके लिए लेकर आया हूं। आज हमारी मैटिनी शो की फिल्म है 1981 में रिलीज हुई राजेश खन्ना और रीना रॉय स्टारर फिल्म धनवान। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फिल्म है आज ही के दिन यानी 24 जुलाई 1981 को रिलीज हुई थी। इसे सोहनलाल कन्वर ने प्रोड्यूस किया था और सपोर्टिंग कास्ट में अरुणा ईरानी, राकेश रोशन, शक्ति कपूर, ओम प्रकाश और विजेंद्र घाड़के शामिल थे। क्या है इस फिल्म की कहानी? इस फिल्म की कहानी हमें एक ऐसी सीख देकर जाती है जो आज भी प्रासंगिक है, जिसे आज के जमाने में भी, इस युग में भी लागू किया जा सकता है। जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में और साथ ही साथ कार्यक्रम में जो हमारे लिसनर्स जुड़े हैं उनका भी जिक्र करूंगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एफएम रेनबो पर। लौट कर आऊंगा इन खूबसूरत गीतों के बाद, ओनली ऑन एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट

0: ऑप्शंस के साथ 16 महीने शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: यस, आकाशवाणी एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स, और मैं हूँ आरजे शैलेंद्र आपके साथ। मस्त मुंबई में कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ कार्यक्रम में बने हैं, कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे, आनंद ले रहे हैं। प्रमोद चिंचोलकर जी हैं, महेश भाटकर जी हैं सेंटा क्रूज से, उसके बाद प्रणव शिंदे जी हैं रेगुलर लिसनर्स में हमारे, और भी कई सारे लोग हैं। शुभलक्ष्मी मास्तेकर है, शुभलक्ष्मी मास्तर के बाद मास्तेकर मैडम के बाद पंकज मोहाड़ है, शुभदा मैडम है, दीपा पालकर मैडम है। थैंक यू सो मच, कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने शिरकत की है और इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने में आप लोगों का साथ और आप लोगों के संदेश जो है बहुत मायने रखते हैं। म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र किया था आज के मैटिनी शो में, आज के शुक्रवार के मैटिनी शो में हम बात कर रहे हैं फिल्म धनवान की। धनवान का मतलब ही होता है जिसके पास बहुत संपत्ति हो, पैसा हो, धन हो। कुछ ऐसे ही हालात रहते हैं हमारे फिल्म के हीरो यानी विजय, जिसके किरदार को निभाया था राजेश खन्ना साहब ने। विजय को अपने पैसों पर बहुत घमंड और गुरूर रहता है, उसे लगता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, और यही घमंड बोलने लगता है जब उसे आशा यानी रीना रॉय से प्यार हो जाता है। विजय आशा के सामने, उसके सामने भी वही पैसे का गुरूर और रुतबा दिखाता है जो अक्सर उसके खून में है। आशा के प्यार को वो खरीदना चाहता है, पैसों से उसे हासिल करना चाहता है, अपने पैसों की धाक देकर उसे अपनाना चाहता है, लेकिन आशा उसके गुरूर को तोड़ देती है और विजय के प्यार को ठुकरा देती है, मना कर देती है। इसलिए क्योंकि उसके विजय को अपने पैसों के घमंड को ज्यादा जो है वो उसके सामने, पैसों का हमेशा घमंड उसके सर चढ़कर बोलता है। रीना विजय के इस प्यार को ठुकरा देती है और अनिल नाम के अकाउंटेंट यानी राजेश रोशन से शादी कर लेती है। अनिल एक मामूली अकाउंटेंट है लेकिन दिल से बहुत अच्छा और अदब दिल है, हमेशा सबसे अच्छे तरीके से और सबको इज्जत देकर बात करने वाला इंसान है। लेकिन रीना यानी आशा का यह फैसला विजय को बिल्कुल मंजूर नहीं होता। आशा का मना करना विजय को गुस्सा और निराशा की राह पर धकेलता है और साथ ही उसका आशा से प्रतिशोध लेने की भावना भी जगा देता है। इस प्रतिशोध की भावना आगे कहानी में एक नया मोड़ लेती है। क्या है इस कहानी में नया मोड़, धनवान की इस कहानी में आगे क्या होता है, बताऊंगा आपको इन खूबसूरत नगमों के बाद। धनवान फिल्म की बात की है मैंने, तो उसी फिल्म से एक भंगड़ा आपके लिए

लेकर आया हूं। नए गीतों के साथ साथ धनवान फिल्म का ये ओल्ड क्लासिक खास आपके लिए। मेरे साथ बने रहिए एफएम रेनबो पर, कहानी आगे जारी रहेगी, जल्द ही लौट कर आऊंगा इन खूबसूरत नगमों के बाद।

लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, अमित कुमार और कोरस की आवाज है। सुधीर लुधियानवी ने इसे लिखा है और पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने इसे कंपोज किया है। धनवान फिल्म।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.5

0: मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज इस गीत में, अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल और प्रीतम दा का एक और बहुत ही प्यारा सा कंपोजिशन, कलंक फिल्म का ये गीत। और स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से यहाँ समय हो चुका है 9:36। आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई। कुछ नए लिसनर्स का जो कार्यक्रम में जुड़े हैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। प्रमोद चिंचोलकर है, विजेंद्र घाटोल है अकोला से, सुरेश बावकर, गणेश पाटिल वाढ़वन से, फिरोज भाई है हमारे रेगुलर लिसनर, अमीशा आरती बीना कांजूर मार्क से इन्होंने विश किया है, बर्थडे विश किया है अपने एक सहेली को जो जो रहती है यूएस में, और उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आपको भी बहुत बहुत बधाई यहाँ इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। शुक्रवार के इस मैटिनी शो में फिल्म धनवान की कहानी जारी है और इसमें आशा से प्रेम का प्रस्ताव ठुकराने के बाद विजय निराशा और गुस्से के साथ साथ आशा और अनिल से प्रतिशोध लेना चाहता है, लेकिन इस दौरान उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी आंखों की रोशनी जो है वो चली जाती है। अब विजय को जो है वो आंखों के डोनर की तलाश है, लेकिन जितनी चाहे उतनी कीमत देने या पैसा देने के बावजूद भी जो है विजय को डोनर, आंखों का डोनर नहीं मिलता। आशा का ठुकराना और आंखों के लिए डोनर न मिलना विजय को ये सिखाता है, ये सीख देता है कि पैसों से जिंदगी में सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। आप पैसे से हर चीज अपने वश में नहीं कर सकते। ये बात, ये रियलाइजेशन जब उसे होता है तो फिर वह भगवान पर विश्वास करने लगता है और प्रार्थना और भगवान की भक्ति करने लगता है, और इसी का फल रहता है कि उसे कुछ दिनों बाद आंखों के लिए एक डोनर मिल जाता है, उसकी आंखों का ऑपरेशन हो जाता है। अब विजय जो है वो देख सकता है, लेकिन विजय को आंखें कौन डोनेट करता है और आशा से इसके तार कैसे जुड़े हुए हैं जानेंगे इस कहानी में एक छोटे से म्यूजिकल अंतराल के बाद। मनोरंजन का ये सिलसिला एफएम रेनबो पर यूं ही चलता रहेगा और आप भी हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। जल्द ही लौट कर आऊंगा। धनवान फिल्म की बात चल रही है, उसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत आपके लिए एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
3: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
2: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
3: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
2: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

पल पल दिल के पास अरिजीत सिंह की आवाज, और ये गीत उनके लिए जिनके दिल के पल पल पास कोई अपना कोई खास रहता है।

9:51 मिनट का समय, एक बार फिर स्वागत है आपका 107.1 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो और न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई। आज का मैटिनी शो जारी है। आज की कहानी है धनवान की और इस कहानी को अंजाम देते हैं। दरअसल विजय को आंखें डोनेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि आशा का पति अनिल है। अनिल को चोरी के झूठे केस में फंसाकर मार दिया जाता है और आशा अब विधवा हो चुकी है और उसे एक बच्चा भी है। जब विजय को इस सच्चाई का पता चलता है कि अनिल ने उसे आंखें डोनेट की है, वो अनिल की आंखें हैं, तो इस सच्चाई के पता लगने पर वो उसे न्याय दिलाने के लिए लड़ता है और आशा के सामने अपना सकारात्मक और बदला हुआ रूप सामने लाता है। अनिल को किसने फंसाया था और उसे कैसे बेगुनाह साबित करना है, वो इसके लिए पूरी कोशिश करता है और इस कोशिश में वो कामयाब भी होता है। अनिल तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, लेकिन उसे इंसाफ जरूर मिल गया है और आशा और उसका बच्चा अभी भी अकेले है। विजय का यह बदला हुआ रूप देखकर आशा विजय को अपनाती है और कहानी का सुखद अंत हो जाता है। ये थी धनवान की कहानी, जिसे एक धनवान आदमी को अपने पैसों के घमंड से परिस्थितियों ने और प्यार ने एक जो है वो अदब दिल इंसान बना दिया। उम्मीद है आज का ये मैटिनी शो धनवान की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी के बाद मिलेंगे कुछ मधुर गीतों के बाद और कार्यक्रम नया नमस्ते भारत आपके लिए लेकर आऊंगा। स्टे ट्यून एफएम रेनबो विथ आरजी शैलेंद्र। बाय द वे, इस धनवान इस कहानी में होली का भी एक गीत है, वो गीत आपके लिए पेश करता हूँ। होली को तो अभी समय है, लेकिन होली की कुछ यादें आपके लिए ज़रूर ताज़ा हो जाएगी। दिल से दिल तक।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: Kalani FM Rainbow 107.1 MHz musically.
1: नमस्कार, सुबह के 10:17 हो चुके हैं। आइए नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। श्री मोदी ने कहा कि इससे संबंधित मसौदों पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। इस मसौदे में फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था और कड़ी सजा का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के साथियों के सुझाव को शामिल करने के बाद मसौदों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सोमवार के संसद

का दूसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सरकार का हर संभव प्रयास रहेगा कि इस विधेयक को पारित किया जाए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और यह लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। समाचार में आगे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APG अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह पहला परीक्षण एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के विरुद्ध किया गया था जो उच्च गति और उच्च ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण कर रहा था और जिसे मिसाइल प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोक दिया। और समाचार के अंत में खेल समाचार। पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी की 19 गेंदों पर खेली गई शानदार 50 रनों की पारी की बदौलत भारत ने महज 13 ओवर 2 गेंदों में 126 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। ये थी इस घंटे की सुर्खियां। FM रेनबो पर अगला कार्यक्रम है नमस्ते भारत, और नमस्ते भारत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, एफएम रेनबो पर नए कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। नमस्ते भारत कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, जिसमें हमारे आज का सेगमेंट रहता है गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे ही गांव में जो बहुत प्यारा है। गांव है राजमाची, मुंबई से सिर्फ 150 किलोमीटर दूरी पर लोनावला और कर्जत के बीच स्थित है राजमाची गांव, जिसे उदयवाड़ी नाम से भी जाना जाता है। इस गांव की खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व भी जो है वो जानने जैसा है, क्योंकि इसका इतिहास जुड़ा है शिवकाल से भी और पुरातन काल से भी। चलिए इस गांव के बारे में जानेंगे और इसकी नैसर्गिक सुंदरता के बारे में भी आपसे बातें होगी। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे यानी आरजे शैलेंद्र के साथ। जल्द ही लौट कर आऊँगा इन खूबसूरत नगमों के बाद एफएम रेनबो पर दिल से दिल तक।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
4: इंटरनेट बैंकिंग,
3: मोबाइल बैंकिंग,
4: व्हाट्सएप बैंकिंग,
3: ईकेवाईसी,
4: एनईएफटी, आरटीजीएस,
3: आईएमपीएस,
4: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
3: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस

ये दूरिया लव आजकल इस फिल्म से ये गीत जो दूरियों में भी कायम रहा, वो तेरा प्यार था और तेरे जाने के बाद भी जो मेरे पास रहा, हमेशा रहा, वो तेरा प्यार था। मोहित चौहान की आवाज इस गीत में और इरशाद कामिल के लिखे बोल प्रीतम दा का ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पोजिशन। आरजे शैलेंद्र के साथ आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत, मेरा गांव मेरा देश में। आज हम आए हैं मुंबई के पास के राजमाची गांव में। राजमाची सह्याद्री पर्वत श्रृंखला यानी पश्चिम घाट में स्थित एक बेहद सुंदर और ऐतिहासिक स्थान है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि यहाँ मौजूद है दो किले। राजमाची के ये दोनों किले सातवाहन राजवंश के दौरान लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाए गए थे और 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन किलों को आदिल शाही से जीत लिया था और अपने कब्जे में कर लिया था। बाद में समय बदला, ये किला मुगलों, पेशवाओं और 1818 में अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। ऐसी कई घटनाएं हैं राजमाची गांव में, जहां पर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं और साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टिकोण से भी इस गांव को देखा जा सकता है। इन किलों तक, अगर आप इन किलों को देखना चाहते हैं, तो इन किलों तक कैसे पहुंचा जा सकता है, या फिर राजमाची गांव पर हम राजमाची गांव को कैसे जा सकते हैं, बताऊंगा आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। किले, पहाड़, नदियां, इन सभी से खूबसूरत है ये गांव। म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आके इस राजमाची गांव की बातें जारी रहेगी। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द ही लौट कर आऊंगा एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो है म्यूजिकली योर्स।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

श्रेया घोषाल की आवाज में जैकपॉट इस फिल्म से आप ये नगमा सुन रहे थे। तुर्ज और अजीम सिराजी ने इसे लिखा था और शरीफ और तोशी ने इस गीत को कंपोज किया था। स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से 10:35 का समय हो चुका है। आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत में गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। राजमाची गांव या फिर उधेवाड़ी, इस गांव के बारे में आपसे बातें जारी है। यहां पहुंचने के लिए आप लोनावला रेलवे स्टेशन से राजमाची गांव तक 15 या 16 किलोमीटर की यात्रा बस से कर सकते हैं। इसके अलावा कई पर्यटक जो है वो तुंगारली बांध तक जाने के लिए निजी जीप, या जिसे कुछ लोग विक्रम भी कहते हैं, या फिर ऑटो लेते हैं और वहीं से ट्रैकिंग की शुरुआत भी करते हैं। और अगर आप बहुत ही नेचर से प्रेम करते हैं, नेचर प्रेमी हैं, तो ये दूरी जो है 10 किलोमीटर की दूरी आप जंगल से होते हुए रास्ते और निसर्ग का आनंद लेते हुए बाय वॉक भी आप इस दूरी को पूरा कर सकते हैं। ये लोनावला स्टेशन से की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप करजत स्टेशन से जाना चाहते हैं तो करजत के पास कोंडीवड़े गांव से आप कोंधने बुद्ध गुफाओं के माध्यम से भी किले की तरफ बढ़ सकते हैं। दोनों विकल्प है। और हाँ, ये जो दोनों किले यहाँ पर है उनके नाम आपको बताऊंगा। और जानते हैं यहाँ ट्रैकिंग और पर्यटन के बारे में भी जो है वो कई पॉसिबिलिटीज़ है। और यहाँ पर्यटक ट्रैक

किंग के लिए बहुत आते हैं। सो कहीं मत जाइएगा, एफएम रेनबो पर इस खूबसूरत गांव की बातें जारी रहेगी और साथ में खूबसूरत गीत भी जारी रहेंगे। एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

सुमेधा कारमाही की आवाज में ये बरेली की बर्फी फिल्म से ये खूबसूरत सा मीठा सा बिल्कुल बर्फी जैसा गीत उम्मीद

करता हूँ आप सभी लोग इस गीत को और कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे होंगे। और कुछ लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनका जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें रजनीकांत पाटिल है, वाढ़वन से उन्होंने संदेश भेजा है। राकेश माथुर पुणे से हमारे साथ कार्यक्रम के शुरू से ही जुड़े हुए हैं। वैदी मैडम नवी मुंबई से कार्यक्रम में शिरकत की है उन्होंने। संजय पाटिल है, मंगेश जोशी ने जस्ट थोड़ी देर पहले ही संदेश भेजा है, कह रहे हैं कि गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, उन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और गाने भी वो एंजॉय कर रहे हैं। आकाशवाणी का ये FM रेनबो चैनल, RJ शैलेंद्र के साथ आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। राजमाची या उधेवाड़ी गाँव के बारे में बातें जारी है और ट्रैकिंग के लिए यहाँ दो किले हैं, एक मनोरंजन जिसकी ऊंचाई लगभग 2510 फीट है और दूसरा है श्रीवर्धन जिसकी ऊंचाई लगभग 2720 फीट है। दोनों किले ट्रैकिंग के दृष्टिकोण से आदर्श और साथ ही साथ चुनौतीपूर्ण भी है। हरे भरे पहाड़, असंख्य झरने और कोहरे की चादर इस जगह को मानसून के मौसम में ट्रैकर्स के बीच इसे पसंदीदा स्थान बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा का ये भाग जो है वो आपको पसंद आया होगा और साथ ही साथ राजमाची या उधे गाँव की ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। FM रेनबो पर एंटरटेनमेंट और इन्फोटेनमेंट की बातें जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा, जल्द ही लौट कर आऊँगा। स्टे ट्यून FM रेनबो विथ RJ शैलेंद्र।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो हो, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

जी हाँ, तेरे प्यार में और तेरे इंतजार में, आपके और मेरे बीच की ये जो रंगत संगत और बातों का सिलसिला है, अब थोड़ा इंतज़ार पर जाने वाला है, क्योंकि मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है। 10:53 का समय, मैं यहाँ से आपसे विदा लूँगा। जल्द ही हमारी मुलाकात होगी, लेकिन मैं जब भी आपसे विदा लेता हूँ तो आप सभी के लिए यही दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी में हर किसी को उसका सच्चा प्यार मिले और वो बहुत बहुत खुश रहे। आप सभी लोग अच्छा देखे, अच्छा सुने, अच्छा महसूस करें, उनके साथ समय बिताए जिनके साथ आपको समय का पता नहीं चलता। शुक्रवार है आज, और शुक्रवार जैसे ही शुरू हो जाता है वीकेंड की खुशबू आने लगती है। कुछ लोग जो है वो काम को जो है वो थोड़ा सा दरकिनार करके वीकेंड मनाने की प्लानिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। उम्मीद है आपका ये वीकेंड जो है वो बिल्कुल खुशियों से मनाए, आप एंजॉय कीजिए, अपने के साथ समय बिताए। मैं आरजे शैलेंद्र आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तब तक कीप लिसनिंग, कीप लविंग एफएम रेनबो एंड लव मी टू। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू All.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने कहा कि इससे संबंधित मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। इस मसौदे में फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था और कड़ी सजा का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के साथियों के सुझाव को शामिल करने के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का हर संभव प्रयास रहेगा कि इस विधेयक को संसद के इसी सत्र में पारित किया जाए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचू ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। वांगचू की पत्नी गीतांजलि और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचू से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित

0: तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कल एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेगी। ध्वजावाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशाल वाहक लवलीना बोर गोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने ओवियो हाइड्रो एरिना में प्रवेश किया। उद्घाटन समारोह से पहले ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने पदकों की शुरुआत कर दी। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय ठीक 11:03 हुए हैं और ये समय होता है प्रोग्राम ब्रेक फ्री का। मैं हूँ आरजे किरण माला। इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: इस समय ठीक 11:07 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM Rainbow 107.1 MHz पर. जैसा कि आज आप सुनेंगे ब्रेक फ्री में बहुत ही अच्छी, यानी कि बहुत ही अच्छा मैंने एक स्क्रिप्ट लेके आई हूँ आप सभी के लिए, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा. ब्रेक फ्री होकर कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए. जी हाँ, एक स्कॉलर ने कहा है कि अपने आप से प्यार करना ही सबसे बड़ा सुख है. आप अपनी सबसे बड़ी संपत्ति है. सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है. यानी हमारी ये सबसे बड़ी संपत्ति, ये ज़िंदगी धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है और हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम खुद को, अपने आप को ठीक तरह से कभी केयर करते ही नहीं हैं, अपने देखभाल पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं. हम ज़िंदगी की भाग दौड़ में खोए रहते हैं और हमारी ज़िंदगी कहीं पीछे छूट जाती है. इसके बारे में व्हाट्सएप के ज़रिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कह सकते हैं. आपके मैसेजेस का हमें इंतज़ार रहेगा. हमारा फ़ोन नंबर है 8657661071. इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं. तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना.

0: समझाना। व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: इस समय ठीक 11:21 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज है 24 जुलाई 2026। आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे मनाया जा रहा है। सीधा सीधा मतलब है कि खुद की केयर करना, और इस साल का थीम है मेंटल हेल्थ मैटर्स, यानी मानसिक सेहत बहुत ज़रूरी है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अगर आपका कोई अनुभव है तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।

जी हाँ, समय ठीक 11:27 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम चल रहा है ब्रेक फ्री। ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो दिल और दिमाग के भी अच्छे रहने की पूरी संभावना है। आज पूरी दुनिया में डिप्रेशन की बीमारी बढ़ रही है। आज से लगभग 25-30 साल पहले भारत में इसका कोई खास असर नहीं नज़र आता था, लेकिन अब हमारे भारत में भी इस बीमारी का असर नज़र आ रहा है। इससे बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है इसे ठीक तरह से समझा जाए।

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: ग्यारह बजकर 36 मिनट हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रेक फ्री. जो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं उन्हें हर समय उदासी महसूस होती रहती है. सब कुछ खाली खाली लगता है. जिंदगी में निराशा का भाव बना रहता है. ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है. यहाँ तक कि जो काम उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होता है उसमें भी उनका मन नहीं लगता है. रात में बिल्कुल भी नींद ना आना या बहुत ज़्यादा नींद आना. खाने पीने की आदतें भी बदल जाती है. बहुत कम भूख लगना या बहुत ज़्यादा भूख लगना. जिन बातों पर हम पहले कभी गुस्सा नहीं आता था या गुस्सा नहीं करते थे उन सभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना. आने वाले समय को लेकर खराब सोचना, ये सारे डिप्रेशन की बीमारी के लक्षण हैं. तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गाने की ओर.

0: तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: 11:42 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे मनाया जा रहा है और इसका थीम है मेंटल हेल्थ मैटर्स। तो मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए अगर किसी इंसान को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो इसे जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहिए और अपनी यानी खुद के ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए। अगर आप खुद पर ध्यान देंगे तभी तो दुनिया आप पर ध्यान देंगी और फिर आपकी लाइफ होगी ब्रेक फ्री।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आरजी किरण माला, इस समय आपके साथ। जैसा कि हमने आपसे एक सवाल पूछा था, तो बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने अपने अंदाज में जवाब दिए हैं। तो यहाँ पर दीपा पालकर जी लिखती हैं कि मुझे मेरे खुद पर बेहद विश्वास है, मैं हर रोज़ हरी सब्जी और फल खाती हूँ, आधा घंटा चलती हूँ, 10 मिनट योग करती हूँ, हर 2-3 साल में एक बार मेडिकल चेकअप भी कराती हूँ और साथ ही रेडियो पर गाने भी सुनती हूँ और हंसते रहना ये मेरी पैदाइशी आदत है। परिवार और दोस्त मेरी संपत्ति है। जी हाँ, बहुत अच्छा लिखा है आपने। और साथ ही और भी श्रोता है जिन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। यहाँ पे डॉक्टर अंजू अंधेरी से लिखती हैं कि उन्होंने बहुत सारा समय अपनी फैमिली पर बिताया, यानी खर्च कर दिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान दिया, बच्चों को बड़े किए, इस तरह से उन्होंने लिखा है। बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफाइस भी किया है उन्होंने, यानी अपनी खुशियों का, लेकिन अब वो बहुत ही खुश है और बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही है, रिटायर्ड हो गई हैं और साथ ही हर डांस में पार्ट करना, कल्चरल एक्टिविटी जो सोसाइटी में होती है उनमें भाग लेना, गाने सुनना, इन सब चीज़ों को वो अब इंजॉय कर रही है। जी हाँ, बहुत खूब। और साथ ही और भी हैं हमारे श्रोता जिन्होंने लिखा है। यहाँ पर जैसे कि पंकज मोहोर जी हैं, नितिन स्वामी एरोली से, शुभलक्ष्मी मस्तकर हैं, श्रीधरन भी हैं और साथ ही प्रमोद चिंचोलकर जी भी, राकेश माथुर, इन सभी ने कुछ ना कुछ लिखा है। तो मैं यहाँ पर एक और मैसेज ले लेती हूँ। यहाँ पर एक पोस्ट किया है किसी ने, इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वक्त चलता है कछुए की चाल, मगर देर हो जाती है संभलते संभलते। विशाल बापट पुणे से इन्होंने लिखा है ये। और साथ ही मैं और बता दूं, श्रोता है जिन्होंने बहुत, मैंने कहा है ना भाई, आप लोग बहुत ही कम शब्दों में लिखें ताकि मैं पढ़ पाऊँ और जल्दी जल्दी आंसर दे पाऊँ। तो यहाँ पर है राजेंद्र परमार जी, वो

लिखते हैं, चाहे कोई खुश हो या गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी गुजार ले। हम तो मस्त राम बन के जीते हैं, यानी कोई उन्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे लिखते हैं कि गम को लेकर जिंदगी नहीं जीना चाहिए, परिवार दोस्तों से मिलो, हंसी खुशी की बातें करो, डिप्रेशन में नहीं रहोगे, या FM रेनबो से जुड़े रहो, मुफ्त में टॉनिक मिलता है। जी हाँ, ये बात बहुत सही कहा है आपने। गाने बहुत ही अच्छे होते हैं जो कि हमारे हर गम को दूर कर देता है। तो इसी बात पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में है।

0: दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण अब आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन भी किए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक छात्र की मौत हो गई और पुलिस ने छात्र की मां की शिकायत के बावजूद FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है और महिला को दर्शाने वाला वायरल वीडियो AI द्वारा निर्मित डीप फेक है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गई। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि तेल की कीमतों में लंबे समय तक वृद्धि केंद्रीय बैंकों पर ब्याज दरों को लंबे समय तक उच्च बनाए रखने का दबाव डाल सकती है। पालघर जिले में पिछले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश से 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमों ने रात भर चले बचाव अभियान में जलमग्न इलाकों से 244 लोगों को सुरक्षित निकाला। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय ठीक 12:02 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम म्यूजिक कैफे का। मैं हूँ RJ किरण माला। इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

जी हाँ, समय ठीक 12:09 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। तो दोस्तों, आज बहुत ही खास दिन है, वो क्या है वो हम अभी बताते हैं। भारत कुमार के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार का असली नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। उन्होंने 4 दशकों के करियर में देशभक्ति पर आधारित कई शानदार फिल्में दी। उनका जन्म एटाबाद में हुआ था, अब ये जगह पाकिस्तान में है। 1947 के बंटवारे के दौरान उनका परिवार दिल्ली के रिफ्यूजी कैंप में रहा था। ये वक्त उनके परिवार के लिए बहुत ही मुश्किलों से भरा था। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, हम उनके बर्थ एनिवर्सरी पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। तो हम इन्हीं के फिल्मों के गाने सुनेंगे जो कि हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले प्ले कर दिया, तो आप सभी को आइडिया आ गया होगा कि आज क्या खास दिन है। जी हाँ, तो बढ़ते हैं अगले गाने की ओर।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: इस समय ठीक 12:17 हुए हैं और आप सुन रहे हैं FM रेनबो चैनल। 1964 में एक फिल्म आई थी, फिल्म के संगीतकार थे मदन मोहन। उन्होंने फिल्म के लिए एक गाना बनाया था। फिल्म के निर्देशक राज खोसला साहब को ये गाना पसंद नहीं आया, लेकिन फिल्म के हीरो मनोज कुमार को वो गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि इस गाने को फिल्म में ज़रूर रखना चाहिए। वो गाना था लग जा गले और फिल्म का नाम था वो कौन थी। तो चलिए इसी खूबसूरत गीत को हम सुनते हैं, लेकिन और बात मुझे याद आ गई, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। दोस्तों, 1970 में एक और फिल्म आई थी, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म हिंदुस्तान में बहुत चली। मनोज कुमार को एक नया नाम मिला, भारत कुमार। ब्रिटेन और दुनिया के दूसरे देशों में भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया। कुछ थिएटर में ये फिल्म बहुत लंबे अरसे तक वहाँ लगातार चलती रही। तो हम पहले वो कौन थी फिल्म का गाना सुनेंगे, उस

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं। भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है। तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है, तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सब

0: से बड़े मददगार हैं।
1: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है लेकिन सुरक्षा का है।
0: जी,
1: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी।
0: जी,
1: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा

0: मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है?
1: 8800-440-5559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
1: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ। और तुम?
3: मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
3: भाई वाह।
4: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
3: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
4: अच्छा,
3: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
4: वाह,
3: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
4: हाँ, ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
3: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
4: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
3: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।

0: वो कैसे?
1: अरे भाई मैं समझाता हूँ, आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
0: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
1: वो कैसे?
0: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाएं। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
1: भाई वाह!
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
1: बड़ा ऊंचा पहाड़ है, पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
0: ये तो है, चढ़ते रहो चढ़ते रहो।
3: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुंचे तो सही।
0: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
3: मैं क्योटो देखूंगा
0: और मैं ओसाका।
3: क्यों नहीं, चलो
0: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
1: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
0: चलो
1: संभल कर।
0: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
3: बचे।
2: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
1: हैं? ये क्या? क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
0: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
3: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
0: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से? चलो चलो यहाँ से।
1: हाँ चलो।
2: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
4: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय

प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
4: जी।
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है?
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगी?
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ, क्यों भाई नमक नहीं ले जा सकते क्या?
4: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
3: है?
4: और वैसे भी नमक का आप करेंगी क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
3: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
4: मेरी माँ? बाजी हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
3: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
4: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक

0: उनसे रच बस गई होंगी।
1: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
0: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। आप कानून तो जानती नहीं।
1: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
0: ओहो बाजी आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
1: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
0: ओफो, हम आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
1: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। इस बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ ये ठीक रहेगा।
0: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
1: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
0: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
1: नमक का मोल पूछने।
2: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है,
1: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
1: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
1: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
2: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
1: अब जी, ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
1: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप लीजिए जनाब, अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब।

0: हो गया जनाब, जाए
1: ठीक है,
0: ठीक है जी, खुदा।
2: ए आप भी इधर आइए, दिखाइए सामान।
3: साहब मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
4: आप इधर आइए।
3: हाँ
4: इधर आइए
3: जी।
4: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
3: हाँ?
4: माफ कीजिए, चाय पिएंगे क्या आप?
3: नहीं।
4: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें जी। हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
3: तो साहब क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
4: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है। इंसानों का वतन यहाँ दिल में है, दिल में।
3: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
4: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
3: ठीक

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग। अब से कुछ ही पलों में यानी ठीक 1 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद होगा कार्यक्रम हिट एंड हॉट। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अपनी पसंद के गाने और अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए आपको 8657661071 पर हमें भेजने हैं आपको कौन से गाने सुनने हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम यानी हिट एंड हॉट में आप 90s के दौर के गाने भेजे हमें, हम उन गानों को प्ले करेंगे। इंतज़ार करिए समाचार का।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: इस समय ठीक 1:05 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और इस समय प्रोग्राम होता है हिट एंड हॉट का और इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अपनी पसंद के गाने। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ। इस गाने को सुनना चाहते हैं अजय साखरे, पंकज मोहड़, अमरावती से।

1:17 हुए हैं, तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। इस गाने को सुनना चाहते हैं गोपाल सकपाल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दामिनी का ये गाना, और इस गाने को पसंद किया था दीपा पालकर जी ने। तो अब से कुछ ही पलों में यानी ठीक 1:30 पर आप सुनेंगे मराठी में समाचार। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए FM रेनबो।

0: आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर। वो इंग्लिश

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

अभी जो ये गाना आप सुन रहे थे, इसी गाने की फरमाइश हमारे एक और श्रोता ने की थी, जिनका नाम है विजेंद्र घटोल अकोला से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर। और इस समय हमें बहुत सारे श्रोता जो इस समय सुन रहे हैं, जिनका नाम है मैं ले लेती हूँ। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, नितिन, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, इनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है। साथ ही फिरोज सिंगनपुरिया जी भी हमें सुन रहे हैं। अनिल कामले हिंगोली से हमें सुन रहे हैं। और जी हाँ, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, ये भी हमें सुन रहे हैं। मुकेश कश्यप, इनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है। और हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, ये भी हमें सुन रहे हैं। गुरमीत सिंह, मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हमें सुन रहे हैं। और राकेश माथुर जी, सुबलक्ष्मी जी हैं, संदीप कुमार जी हैं, साथ ही और भी श्रोता है। तो चलिए हम यहाँ पर जल्दी से गाना सुन लेते हैं। अभी अभी किसी ने हमें हाय भेजा है, संतोष गावन वर्ली कोलीवाड़ा से हमें सुन रहे हैं। तो सुन लेते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। इस गाने को सुनना चाहते हैं नितिन स्वामी एरोली से।

इसी गाने के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब से कुछ ही पलों में यानी ठीक 2 बजे आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: निर्धारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थी के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने

0: ने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
1: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
2: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
1: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है, जो गलत है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
3: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा, श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया।

0: गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
1: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाउथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में

0: आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है. जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं. गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. आप भी लगवा लीजिए. 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार. 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर.

वेलकम बैक दोस्तों, 5:18 हो गए। टिक टिक करती हूँ घड़ी की काई, कह रही कि वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता और वक्त ना रुके यही होना चाहिए। वक्त रुक जाए तो इंसान रुक जाता है कि नहीं है। चलिए, सांसें आपके अब थमनी नहीं चाहिए, अब सांसें चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आज 5 से 6 के दरमियान मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन से वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो आज की तारीख में सोशल मीडिया के साथ साथ रियल लाइफ में इंसान की जान बन चुके हैं। फिलहाल जान है आपकी आकाशवाणी और इस पर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ जिसका नाम है केई थांडा। बहुत जल्द आपकी भी आवाज़ सुनेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ का जिसका नाम है श्रुति पाठक और दिव्या कुमार। काय पोचे से दिन का आपका शुभारंभ हो ना हो, लेकिन शाम की शुभारंभ आपकी आकाशवाणी के साथ होनी चाहिए।

वेलकम बैक 205 का ठीक 14 मिनट हो चुके हैं और शाम जो है वो अपना रंग दिखा रही है, यानी कि कभी बारिश हो रही है, कभी बारिश बंद हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा छाता लेके निकला जाए या ना निकला जाए। जब छाता लेके निकलते हैं तो बारिश होती नहीं है, और जब छाता लेके ना निकले तो बारिश हो जाती है। रेनकोट पहन के निकलोगे तो बारिश नहीं हो रही है ना। मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ आज, तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, ये जो है सफ़र अलग ही है ना, मज़ा भी एक अलग ही है। थोड़ी सी जब बारिश में किचकिच हो जाती है, यानी कि चारों तरफ जो है कीचड़ हो जाती है, तो बड़ा ही अजीब लगता है, कपड़े गंदे होने का डर लगता है, कहीं जा रहे हो तब घर जो है अजीब लगता है। लेकिन अगर आप घर में हैं तो फिर मन करता है, घर वाले से बोला अरे अच्छा है पकौड़े बना ले जाएँ, है क्या नहीं है तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में, राइट टू डिस्कनेक्ट के बारे में। कभी कभी होता है ना ऑफिस के बाद में बॉस का जब फोन या मैसेज आता है तो भाई साहब बीपी बढ़ जाता है, अरे यार पूरे दिन ऑफिस के अंदर जो है वो माथा खपच्ची कर कर आए हैं, अब घर आए हैं तो ये कलेश है ना। मुंबई की इस भाग दौड़ भरी लाइफ में आजकल बस यही बहस छिड़ी हुई है कि काम के घंटों के बाद ईमेल और मैसेज का जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए। भाई मैं तो इतना कहता हूँ कि अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले संभालिए बॉस, क्योंकि काम तो चलता रहेगा पर ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, है कि नहीं है ना। सुनते हैं एक बेहतरीन सा ट्रैक जो होने वाला है विशाल ददलानी की आवाज़ में, नीति मोहन की आवाज़ में।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार

0: लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: वेलकम बैक दोस्तों, और आज का हमारा दूसरा टॉपिक है डिजिटल डॉक्स। आजकल लोग वीकेंड पर लोकल ट्रेन और ट्रैफिक की भीड़ से दूर अपने स्मार्टफोन्स को बंद करके कसारा या कर्जत के पहाड़ों में जा रहे हैं। बिना रील्स और बिना नोटिफिकेशन के जीना कैसा लगता है, कभी ट्राई कीजिए। स्क्रीन से आँखें हटाइए और अपने पास बैठे इंसान से बात कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी स्क्रीन में नहीं है, सामने है कि नहीं है। अगला बड़ा ये खूबसूरत ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है, ये थोड़ा सा हटके है, इन्जॉय कीजिए।

वेलकम बैक दोस्तों, 5 मिनट ठीक 36 मिनट और 58 सेकंड हो गए और बैक टू बैक आप सुन रहे हैं एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने। और आज का तीसरा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अकेले घूमने निकल रहे हैं। सोलो ट्रेवलिंग का जो ट्रेंड है इन दिनों मुंबई के युवाओं में आसमान छू रहा है। खुद के साथ वक्त बिताना, अनजान रास्तों पर चलना और खुद को नए सिरे से खोजना, यही तो है असली सेल्फ लव। अगर आपने अभी तक कोई सोलो ट्रिप नहीं की तो इस साल आप प्लान जरूर बनाइए। और अगला ट्रैक जो है वो जो है कीर्ति सगाठिया की आवाज में और सोना महापात्रा की आवाज में। सही।

0: भारतात येण्यासाठी आणि मुंबईतून परदेशी जाण्यासाठी मुंबई हे महत्त्वाचं ठिकाण झालं आणि मुंबईला गेट ऑफ इंडिया अशी ओळख मिळाली.
1: 2 डिसेंबर 1911 रोजी राजाराणीच्या स्वागतासाठी शामियान्यात मान्यवरांच्या उपस्थितीत ब्रिटिश भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड हार्डिंग्स आणि मुंबईचे गव्हर्नर लॉर्ड सिडनहॅम यांनी राजाराणीचं भव्य स्वागत केलं.
0: गेटवेसाठी सरकारची तिजोरी मोकळी सोडली. कंत्राटदारांनीही जोर लावला आणि अखेर 1924 मध्यावर गेटवे ऑफ इंडिया उद्घाटनासाठी तयार असल्याची वर्दी सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं सरकारला दिली.
2: अज्ञात मुंबई. नितीन साळुंखे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकातल्या गेटवे ऑफ इंडियाच्या निर्मितीच्या या गोष्टीचं अभिवाचन केलंय नितीन वाघ आणि अश्विनी बोरसे पवार यांनी. ही गोष्ट अवश्य ऐका. 29 जुलै पर्यंत दररोज सकाळी 7:45 FM रेनबो वर आणि सकाळी 9 वेव्ज या OTT प्लॅटफॉर्म सह अस्मिता वाहिनीवर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍप वर दोन्ही वेळेला.
3: वेलकम बैक दोस्तों, 5:49 हो चुके हैं और आप सुन रहे FM रेनबो 107.1 FM मुंबई स्टूडियो से खूबसूरत सा कार्यक्रम जिसका नाम है लव यू जिंदगी अपने दोस्त के साथ जिसका नाम है के थांडा. और फिलहाल अगला टॉपिक है बड़ा ही खूबसूरत सा. अगर आप इंजॉय करते हैं होम कुक फूड को या हेल्थ रेवोल्यूशन को तो बेहतरीन बातें हैं कि बाहर का पिज्ज़ा बर्गर छोड़ अब लोग घर के डिब्बे की तरफ लौट चुके हैं. और चाहे बात करो सोशल मीडिया पर किसी भी हैंडल के बारे में तो आज की तारीख में दाल चावल और माँ के हाथ का स्वाद का सबसे ज़्यादा जो है खाना ट्रेंड कर रहा है क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ. सेहत है तो सब कुछ है बॉस. और जहां तक बात है आज की तारीख में हर इंसान हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है अमूमन. वो बात अलग है जब सड़क पे चलते हैं तो टिक्की खाने का मन कर जाता है, गोलगप्पे खाने का मन कर जाता है, पानी पूरी के साथ साथ चाट मसाले भी ट्राई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है कहूंगा अनकॉन्शियस माइंड में आपकी चलती रहती बात की यार आज ये खा लिया. तो कोशिश कर रही है कि जब शीशे में खुद को देखूं तो अजीब ना लगूं, है ना. कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ एक बातचीत में एक बात आई जाती है कि यार थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा. हाँ यार थोड़ा सा फूल रहा हूँ,

हाँ यार, थोड़ा सा पतला हो रहा हूँ यार, थोड़ी स्किन खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं पहले से कहीं गुना ज़्यादा अब हेल्थ के बारे में बातचीत होने लगी है। और इसी के साथ मैं कहूँगा, देखिए हेल्थ कहीं आगे पीछे जाए वो आपके हाथ में है, लेकिन नैनो की जो बात है ये हमेशा से एक ही रही है कि उसका क्या कसूर है। चश्मे के नंबर बेशक बदल जाते हैं पर नज़रें हमेशा एक सी रहती हैं।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं बैक टू बैक गाने, एक से बढ़कर एक सुपर हिट। और फिलहाल अगला ट्रैक आपके समक्ष आया जो काफी पॉपुलर रहा है अपने समय का, और मैं इतने कहूंगा कि 6:05 पर आप सुनने वाले हैं मराठी में समाचार, और उसके बाद एक और खूबसूरत कार्यक्रम का आगाज होगा जिसका नाम है अंदाजे बयां, जिसमें आप सुनने वाले हैं बड़ी ही खूबसूरत सी कविताएं। तो सुनते हैं इस ट्रैक को जो बिल्कुल मिर्च मसाला जैसा है,

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: म्यूजिकली योर्स में दोस्तों आपका स्वागत है, यानी कि अपने एफएम रेनबो 107.1 एफएम पे। फिलहाल जब सर्दियां बहुत ज़्यादा होती हैं तो ज़बान लड़खड़ाने लगती है, ऐसे होने लगता है, लेकिन कभी कभार रियल ज़िंदगी में भी शब्द जो है लड़खड़ा जाते हैं और जो है ज़बान थोड़ी पलट जाती है। लेकिन कुछ खूबसूरत सी कविताएँ ऐसे हैं, अगर उनके बारे में आपसे जिक्र किया जाए तो हो सकता है कि ज़बान भी बेहतर हो जाए और सोच भी बेहतर हो जाए। क्योंकि आज कार्यक्रम अंदाज़े बयां में कुछ इसी तरह की किताबें आपके साथ में, उन किताबों की खूबसूरत सी कविताएं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। शुरुआत करते हैं उस कविता से जो लोकल ट्रेन के धक्कों के बाद भी हमारे हौसलों को दोबारा ज़िंदा कर देती है। वो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती।

वेलकम बैक दोस्तों, 6:25 हो चुके हैं और शिल्पा राव और अमिताभ भट्टाचार्य और साथ में अमित त्रिवेदी, मन मर्जी है, बहुत ही खूबसूरत सा गीत ये लुटेरे का, और एक और बड़ी ही खूबसूरत सी कविता आपके समक्ष मैं हाजिर करने जा रहा हूँ। और ये लिखी हुई है हरिवंश राय बच्चन जी ने। वो जिंदगी के संघर्ष को बयां करती है ये छोटी और बेहद शक्तिशाली रचना, जो हर मुंबईकर की कहानी है, या यूं कहूँ कि हर इंसान की अमूमन कहानी है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पन छां भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल

0: जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

कविता के बारे में, और ये जो कविता है बहुत ही दिलचस्प है, देश प्रेम और मिट्टी की खूबसूरत, मैं कहूँगा इसमें दोनों आती है। जी हाँ, देश प्रेम और मिट्टी की खुशबू से महकती हुई कविता हर हिंदुस्तानी के दिल के बेहद करीब है। वो कहते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। बेसिकली ये जो है कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एक फूल की दास्ता है, किस तरह से वो जब कह सकते हैं कि शव यात्रा निकलती है उस दौरान रहते हैं, और ये पुष्प किस तरह से चढ़ाए जाते हैं और दिखाए जाते हैं कि ये हमारे प्यार का कितना अटूट जो है विश्वास उसमें दिखाते हैं। अगला गीत आपके समक्ष आने जा रहा है श्रीनिवास की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है ये।

वेलकम बैक दोस्तों, 6:40 हो चुके हैं और अंदाज़ बयां में आप सुन रहे हैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत से गीत। और अब हम बात कर रहे थे एक और खूबसूरत

वेलकम बैक दोस्तों, ये था बड़े खूबसूरत सा ट्रैक श्रुति पाठक की आवाज़ में। और इसी के साथ इस घंटे का आखिरी गीत आपके समक्ष आने जा रहा है। 7 बजे के बाद आप सुनेंगे बड़ा ही खूबसूरत सा एक और शो, जिसके अंदर आप सुनेंगे बॉलीवुड के ट्रिवियास। लास्ट ट्रैक इस घंटे का आयुष्मान खुराना की आवाज़ में, पानी दा रंग।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, Musically Yours.
1: म्यूजिकली और दोस्तों आपका स्वागत है। 7:43 हो चुके हैं। टक टक करती घड़ी की का इशारा कर रही है कि आपको हम तुम नाम के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में बताया जाएं कि आज बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म जगत सिनेमा के कौन कौन सी खूबसूरत सी फिल्में हैं जिनके ट्रिविया आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। खैर, ये फिल्में होने वाली हैं 2017 से, जहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत फिल्में थी, जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि छोटी फिल्मों ने बड़ा कारोबार किया था। वेल, इतना कहूँगा कि शाम के 7 बजे का वक्त जब होता है कि मुंबई की जो है

बत्तियां जल चुकी होती हैं और जितने फिल्मी कीड़े हैं अपनी सीट की पेटी में कहूंगा बांध लीजिए, क्योंकि बॉलीवुड ट्रिविया में आज हम टाइम मशीन में बैठकर पीछे जाएंगे और सैर करेंगे 2017 की। ये वो साल है जब बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म जगत सिनेमा की कहानी बदल रही थी। और शुरुआत में मैं कहना चाहूंगा एक सबसे बड़ा सवाल इसी जवाब के साथ हुआ, जब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इस फिल्म के बाद हर इंसान की जुबान पे यही नाम था कि यार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। फिर बाहुबली 2 आई यानी कि 2 द कंक्लूजन, अप्रैल 2017 में रिलीज हुई और इसके मुंबई के मराठा मंदिर से लेकर पूरे देश के थिएटर्स जो हैं इसमें मैं कहूँगा तरोतार हो गए। सभी जगह इस फिल्म ने जबरदस्त नंबर कमाए। पर क्या आप जानते हैं कि ये भारत की पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी।

वेलकम बैक दोस्तों, 7:22 ठीक 22 मिनट हो चुके हैं और आपने सुने बाहुबली के दो खूबसूरत से ट्रैक। और अब बात कर लेते हैं 2017 का, जो वो साल जो किसी एक्टर के लिए बड़ा ही खास रहा, और वो थे राजकुमार राव। इस एक साल में उनकी बरेली की बर्फी, न्यूटन, शादी में ज़रूर आना और ट्रैप जैसी बेहतरीन फिल्में आई। न्यूटन को तो उस साल ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री में भी चुना गया। तो इतना कहेंगे क्या बात है राज। वैसे आज कल राज के कमेंट के बारे में बहुत बात हो रही है, लेकिन वेल ये वो साल था जब उनकी फिल्मों के बारे में बात हो रही थी। और अब एक और फिल्म आने वाली है उनकी, जिनका नाम है दादा के नाम से, यानी कि जो है अपने दादा, बहुत ही कहूँगा क्रिकेट के ऐसे लेजेंड जिनका नाम जितनी बार लिया जाए उतना ही कम है, और वो है सौरभ गांगुली। और उनका पोस्टर जो है उन्होंने अपने इंस्टा पर भी शेयर किया है, तो मैं उन्हीं की फिल्म से बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। ये है बरेली की बर्फी से हरदीप कौर की आवाज़ में।

वेलकम बैक दोस्तों, साहब जिसका ठीक 28 मिनट हो गए हैं और आपने सुना स्वीटी तेरा ड्रामा। वैसे आजकल तो ड्रामे की जहाँ बात करो वो जितना भी हो मैं कहूँगा कम ही है, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें, चाहे आप टीवी की बात करें, चाहे वो आप अपने घर के आसपास किसी हालात की बात करें। लेकिन इन सब के बीच में 2017 का साल ऐसा था जहाँ पर वाकई में बहुत बड़े बड़े ड्रामे हुए और उन ड्रामों में एक छोटी बजट की फिल्म आई जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम पर करारा तंज कसा, जिसका नाम था हिंदी मीडियम। हमारे प्यारे और दिवंगत अभिनेता इरफान खान की इस फिल्म को मुंबई के दर्शकों का इतना प्यार मिला कि उस साल की स्लीपर हिट साबित हुई और इसने चीन के बॉक्स ऑफिस पर भी ताबा तोड़ कमाई की। गुरु रंधावा की आवाज़ में इसी फिल्म से एक खूबसूरत सा ट्रैक

Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भारतात येण्यासाठी आणि मुंबईतून परदेशी जाण्यासाठी मुंबई हे महत्त्वाचं ठिकाण झालं आणि मुंबईला गेट ऑफ इंडिया अशी ओळख मिळाली।
4: 2 डिसेंबर 1911 रोजी राजा राणीच्या स्वागतासाठी शामियान्यात मान्यवरांच्या उपस्थितीत ब्रिटिश भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड हार्डिंग्स आणि मुंबईचे गव्हर्नर लॉर्ड सिडनहॅम यांनी राजा राणीचं भव्य स्वागत केलं।
3: गेटवेसाठी सरकारची तिजोरी मोकळी सोडली, कंत्राटदारांनीही जोर लावला आणि अखेर 1924 मध्यावर गेटवे ऑफ इंडिया उद्घाटनासाठी तयार असल्याची वर्दी सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं सरकारला दिली।
5: अज्ञात मुंबई, नितीन साळुंखे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकातल्या गेटवे ऑफ इंडियाच्या निर्मितीच्या या गोष्टीचं अभिवाचन केलंय नितीन वाघ आणि अश्विनी बोरसे पवार यांनी। ही गोष्ट अवश्य ऐका। 29 जुलै पर्यंत दररोज सकाळी 7:45 FM रेनबो वर आणि सकाळी 9 वेव्ह या OTT प्लॅटफॉर्म सह अस्मिता वाहिनीवर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍप वर दोन्ही वेळेला।
6: वेलकम बैक दोस्तों, 7:38 हो चुके हैं और अगला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है वो है गोलमाल अगेन से, क्योंकि 2017 में दिवाली पर ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने गोलमाल फ्रेंचाइजी में पहली बार हॉरर यानी कि भूत का एलिमेंट जोड़ा था। ये फिल्म 2017 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में थी। मुंबई के सिनेमाघरों में लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे।

बल दोस्तों 7:47 ठीक 47 मिनट हो चुके हैं। एक फिल्म ऐसी थी जिसका नाम था एक था टाइगर, और उस फिल्म के सीक्वल भी आए और फिल्म भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है चली। सलमान और कटरीना की जोड़ी टाइगर जिंदा है दिसंबर में रिलीज़ हुई थी फिल्म, और अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी एक्शन थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी। इस साल कह सकते हैं फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म का तो ट्रैक सुनेंगे लेकिन एक ट्रैक और जो बहुत ज़रूरी है मैं कहूँगा कि इस घंटे प्ले करना, वो आपके समक्ष हाजिर है। फिलहाल मैं आपसे लूँगा विदा और बहुत जल्दी आपसे वापस मुखातिब होऊंगा। टिल देन बने रहिए 107.1 FM रेनबो पर, क्योंकि बैक टू बैक यहीं होता है। लेस पकाना मोर बजाना, सुनते हैं अगला गाना।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: J-Lo.

0: कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है।

0: सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
1: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
3: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और

0: राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य

0: शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both houses of parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
2: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
1: Mm-hmm. Spokesperson of CJP Ashutosh Ranka, who was part of the

0: मंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मुझे पता है आपके भी दिल की यही आरजू थी कि कोई दिलरुबा मिले, कोई ऐसा मिले जो आपके जख्मों पर हल्का सा कुछ ऐसा फाया रख दे, कुछ ऐसा हाथ रख दे कि बस वो जख्म भरते चले जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो हमसाया बनूं, आपका वो हमसफर बनूं जो आपके लिए तमाम दर्दों की, खासकर दिल के दर्द की दवा का सा काम करें, है ना। मेरा नाम विकास है और मैं आपके साथ सजाने आया हूँ आकाशवाणी की रेनबो पर रंग महफिल। इस रंग महफिल में आप तमाम सुनने वालों का इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है और इस बात के लिए आपका धन्यवाद है कि आपने हमें चुना अपने इस बहुत ही खास वक्त को बिताने के लिए। जुम्मे की रात आपके साथ मैं करूँगा बहुत सारी मीठी मीठी बातें, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत सारी, बहुत सारी मतलब इतनी सारी कि जिन्हें हम हजारों ख्वाहिशें कह सकते हैं वो यहीं पूरी करनी है। जगजीत साहब आ चुके हैं महफिल में, इस्तकबाल कीजिए।

पंजाब में पूरा आसमान है वो, जहाँ उनके नाम का हर सितारा जगमगाता रहता है। उनकी हर गजल, उनका हर नगमा और उनकी आवाज ऐसी है जैसे ऊपर से मालिक की रहमत बरसती हो, है ना। और अगर मैं जगजीत साहब के लिए कहूँ एक बात, वो यही होगी कि बात अगर सुकून की करूँ तो तुम्हारी आवाज ही मेरे लिए काफी है। सचमुच सुकून का दूसरा नाम है जगजीत साहब की आवाज। रंग महफिल में ये आवाज बार बार गूंजती रहेगी, इस भरोसे के साथ आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अगर तुम ना होते तो गजल कौन कहता, अगर तुम ना होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहता, ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
8: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

जी हाँ बिल्कुल, जो पंकज जी कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं कि आइए इश्क फरमाइए, क्योंकि इश्क फरमाने के लिए इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी। ये है आकाशवाणी का रेनबो, जहाँ इस वक्त चल रहा है प्रोग्राम रंगे महफिल, और ये इश्क की वो दुनिया है जहाँ इश्क की तरह ही तमाम रंग मिलते हैं। इस रंगे महफिल में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है, और विकास आपके साथ हैं, और हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। मैं जिक्र करना चाहूँगा मुंबई दादर से रंजीत परमार जी ने हमें मैसेज भेजा है, कह रहे हैं नमस्ते, आपका कार्यक्रम रंगे महफिल गज़लों के इस कार्यक्रम में, इस महफिल में आपका तहे दिल से स्वागत है। जी आपका भी बहुत स्वागत है, और कह रहे हैं कि आपका शायराना अंदाज हम पसंद करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और अगर श्रोता मित्रों गज़ल ना सुनते तो आपको संदेश कौन भेजता। बिल्कुल, कौन अगर सुनता ही कोई नहीं तो मैसेजेस कौन भेजता। और राजेंद्र जी बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये बहुत ही गज़ल जो हमने सुनाई थी बहुत पसंद आई थी। जगजीत साहब गालिब साहब एक साथ मिले तो कैसा अंजाम रहेगा, है ना। ये हमें लिखा है किसने, हमें लिखा है बीती रावत ने गोरखपुर यूपी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यार के लिए। अरुण कुमार रावत जी भी उनके साथ हमें ये मैसेज भेज रहे हैं, और इसके अलावा हमें बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे हैं जिनमें नाम पढ़ देता हूँ उनके। तुम्पा पॉल रेलवे कॉलोनी MK रोड मिंट रोड सेंट्रल दिल्ली से, और बहुत बहुत धन्यवाद। और वो कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं बहुत लंबा कह रहे हैं कि हमें बहुत कुछ कहना है उनके बारे में, लेकिन अभी फ़िलहाल हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि बहुत ही लंबा मैसेज है। हम ज़रूर दोबारा पढ़ के उम्मीद करेंगे कि आपके मैसेज पहुँचाए। जोया मेलबर्न से कुछ देर पहले हमको सुन रही थी, सुदर्शन जी अनिता मुखी सिमरन मुखी हमको दिल्ली से सुन रहे थे, और आपको बहुत बहुत

आशीर्वाद, ऐसा ही प्यार अपना हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल मैं आपको एक और बेहतरीन गज़ल तक पहुंचा रहा हूं, लौट कर आएंगे तो फिर कुछ और बातें करेंगे। और हाँ, मैंने कहा था ना, वादा किया था आपसे कि जगजीत साहब ज़रूर इस महफिल में लौट कर आते रहेंगे। लीजिए आ गए और एक सवाल के साथ आए, बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, सुनिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया

पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आकाशवाणी के रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। मैं हूं आपके साथ विकास और आपसे बस यही कहना है कि अब वक्त कह रहा है कि आज की रंगे महफिल की जो आपकी हमारी मुलाकात है इसके ख़त्म होने की बारी आ चुकी है ना। रात को 11:55 और 18 सेकेंड्स हो चुके हैं और विकास अब आपसे कह रहा है कि मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हंसते गाते मुस्कुराते हुए सुनते रहिएगा रंगे महफिल के साथ साथ आकाशवाणी के अन्य प्रोग्राम भी। ठीक है, तो फिलहाल टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले हफ्ते।
1: भूपेंद्र भी अकेले नहीं थे, उनके साथ मिताली थी।

बारह बजते हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित कराने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कई नई दिल्ली में सीजेपी के मंत्री प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। चीन में आईएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और गुजरात में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित।

0: आकाशवाणी
1: 12:02 और 28 सेकंड हुए हैं। आइए दोस्तों, आप सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आवर शो और प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म लोफर से।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मोहम्मद रफी को आइए अब आपको सुनवाते जिस गीत, इसे हमने लिया है फिल्म नैना से।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: जीरो अर्शो में अब आपको सुनवा रहे हैं नाखुदा फिल्म का गीत, जिसे आवाज दी है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: बहारों फूल बरसाओ, आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है सूरज।

0: 12:34 और 10 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
0: लता मंगेशकर की आवाज में आइए सुनते हैं शालीमार फिल्म का ये गीत।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: धनवान फिल्में आइए अब सुनते हैं सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर को।

एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर में आइए आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र का गाया फिल्म बाजार का ये गीत।

इसके साथ ही जीरो आर प्रोग्राम ऐप समाप्त होता है। मुझे यानी अर्चना बिसारिया को इस प्रोग्राम को खत्म करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: से।
1: एक बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजीपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी कुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्री हरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

दो बजे हैं, आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। रोमानिया की बुकारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत रोमानिया संबंधों की मजबूती में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और गुजरात में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित।

0: आकाशवाणी
1: 2:02 और 47 सेकंड हो गए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अनुमति सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। भारत और इजराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में प्रगति जारी रखी। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस महीने की 18 तारीख को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत MV ओमोराफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। पोत पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। हॉकी में भारतीय जूनियर श्रेणी के लड़कों ने मस्कत ओमान में आयोजित FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से हराया। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की लड़कियों ने एलीट पूल के अपने मैच में चीन के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया, लेकिन 3-6 से हार गईं। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र

हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत रोमानिया संबंधों की मजबूती में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत के झंडू कुमार ने राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवैः संगीतस्तुतिमंगलैः प्रसरता।